0: نوديها كم ميجا هاتس تبقى هي فعلا.
1: ए मावेस सुट्टा लाफिंग
2: आहार में सुट्टा लाफिंग
3: ए लिस्टो का मावेस ही मना ला
4: अमील ला फैसा आंदा गें अमील ला हाशिंगड़ा गेल्लुं दिरुमा की किहा मोय कमे ए में मावेस सुट्टा लाफिंग
5: दुम फाई आहार में गे हाथुरे दुम फतु के इस्तेमाल कुरुम के साबुन दिमावा सिही मसल तो गा आहार को हैम मिलियन वुरे किना मी हु मरवा कमा ताफा हिसाब तकुन दक्का फस नुजेही अवह दुमफतुगे इस्तियो माल कुरूं हुट्टा लमाहिंगा।
6: दिवे ही एफएम, नुआ दिहे एकम मेगाहर्ट्स।
7: मी अहमद आमिर,

0: दुआ को सारे गीतों को जैसा रो वादा नंत
1: नो
0: प्रॉमिस
1: प्रॉमिस
2: एमी हम था अबदु एकु गवमा बाउ दुवे.

देखे मेघर्स दिव्य फेमो मेघ डेगा अलग में कुरी एम्मी के लंच ब्रेक में शो या को मे दु कुरी एम्मी तनी रमला जमाने दुनिया के कामयाब में हग बुमा की हमें करी माती को तुम कुरी रूं होद में नू हगीगी कामयाबी है कि हाशिकंडा सिकुंडी के दूर है कल दिव्य केंग हिंग हम जो है उफावर दिव्य ओल में उड़ो इनका मन दुनिया के दुएले कितम में हालुई नमविस अमिला नफसट्टा का मरुच हिला फुन नेवाइला तिमा बेनुम वा वागुत होद मकी मिया दो देरी उल मा एम में मुहिम खम्मे के गोतुगा देखे एकं हासिल कर मंगल में मस्से के कोले जहनी जमाने देरी उल मा नफसाने तुड़े को मुगे वाहक अर्गुमेंट दक्का लायर मी हमे कनी अर्गुमेंट नंग एकनी कोल्ले वेन खम्मे बिस नो मुले मुझतमोग फेम वर्ग बिस अर्गुमेंट नंग कोल्ले विधाने बैवर कंट तंगे बहुरी मैं तो अर्गुमेंट के मुझतमोगा मैं वागत की कामयाबी के मिंगने की सावुस कड़ेर का मस्सकत को उड़ों का मा देखे वे अब तो बिजी को उड़ों का मा मैं बनी बिस निफा अर्मी का मुझे सब उनका अर्गुमेंट ना सही इतना मस्सल तक आ कोई मत लांगे बजे है मैं आगे ही तुगे पाले तक आ दाई मैं बोलोगा रिहु मका मागुफा ही वे के मिस गिन फहर के बदे अब तो पुरु को उड़ों मा की उफेदु तेरी कंग इतुरुवा का मैं बिस नों एक बदल गा सिकुंडी भारु बाले वे निम्मुन तर निम्मा बिस गिन फहर उदगो तक आ कोई मत लांगे बजे है जमाने दिरुम के तेरे नफसाने दुड़े हो को होदानी अमिला नफसा वशाग मा माहौल आदि में तो साफ को विस्ता एकमुगा अलगुमें ना गिना विस्तुन तके विस्ता के एहम विवा अलगुमें कुम्मे दुहा को विस्थावल रावाला आयरो मिहिरा मिहिरा काल कांत तक विस्ता के रावालो मी बारा मुहे मुकमे तिमाए नुकुरे वेन वरुगे कंकमा हवाल नुवु मीव समा एमे रंगलु एगोई अमेल हकते वरे इतुरा कंकम वागुतो नुदिनु मेविस मिसनालो मुहिमु कमे देन हमेया को गेग हुन्ना वागुते तहुगा ओमेस्वरकं ओफीहुगे मसेकेटका इफरा बेला ए वागुतकी हमेकने आइलायशा अमेल हिंहम जहुमं ओय वागुत कोलाकं हेदु मेविस अर्गुमेंगे दिरिगुल मकेने वितानी हेओ बदले

0: नो दी है के मेगाहर्ट्स दी वे ही एफएम मगरिब नमाद वक्त
1: अल्लाहु अकबर अल्लाह

0: ke megards tive fmu migadiga kuriamidani eng adakum mi show mirege show hasa fmu vani kavita krishna murti ge allavataka miha hisabun show ge firtama bavere wahakata kalana assalamu alaikum mariam
1: wa alaikum salam
0: kine halu
1: alhamdulillah ko sama kine
0: ha ma var rangal
1: mashallah
0: ko ba visarata
1: a visar ko uleni denga ko mehar ko vehe vebar
0: medo ve hunu do
1: ah ve hu
0: avi kole vesnu de
1: avi kole kula kula palo palo kon avi ko ko di
0: aha eh avi kole di fa den anen hen bana kon onani do
1: ah bana kon
0: onani den gada wane kama me tofi hun ves bunani angani do
1: ah
0: den idu fashion mi oggen hama korali ma fenne hisab ga mi uti do
1: yar ajje
0: he do damali ma
1: आ
0: मिहार देन को बा एमएफ हो के तैयारी था की
1: मालूम इस मौसम में अलग नहीं मार दे मेरे
0: हाँ मिहार फिर के रेडी करनी थी
1: आ नुमाने
0: देवत्तर वालं जहे भी आ दो
1: देवत्तर तीन वत्तर वालं जहे रहनो
0: को बा तीन वत्तर की
1: मैं कल आपको गबुली बोल के बालं जहे ने
0: हाँ
1: केक वालं जहे ने कुल्लू बोल के
0: কিভাবে তা গাবলি বক বা কমে আলেন জেনে
1: এমে
0: এমে কুরি গাহাদা কইতেই গাবলি বক বেলে গন্নন জেনে
1: আ গাবলি বক বেলে গন্নন জেনে নন
0: এহেন তা আলামি এঙ্গুনি সামামি আর গোলেনি কেক
1: গাবলি বক বা নোরা গাবলি বক বা শুননন জেনে গাবাদম নিবেন
0: আহা হা তা ফোনি বক বা তাই কেতি অননি কুড়ি বেজ্জা কুড়ি বক বা একানি টাটা
1: दो बॉक्स बा एकदम ए ए कुड़ी होना ले कुड़ी खा जाए फाड़ फाड़ के कुड़ी अच्छी एं अच्छी वे सुनना ले
0: एहम वाली दो एक कला ए इधर तैयार करा आतु जहिया
1: आतु जहिया
0: कुड़ी रोशी दो एक हाले ची दो
1: हाँ
0: हाँ को बाय का लेत कुड़ी तैयार कर ले बनुत दे
1: एक ये होना तैयार को क्या
0: कुड़िया ला रेडी के दो होना
1: नहीं
0: हाँ तो साड़ी साड़ी शेप शेप अंगूरे ये अच्छी ही तो
1: हेलो माने
0: कुलदाना का मींगे नहीं तो तीव्र हिंगे मिकाल अच्छी ही नो बस को बा सवाल अमी दान इंगे सवाल अमी होती इंगे
1: आ द
0: सवाल का मी होती ऑप्शन जवाब देना इंगे
1: आ
0: कविता कृष्ण मूर्ति उफम वेफा वनी कों आहारा को है ये हाँ का मी होती नवार से का फंसास आशे शावियानी के में ती नवार्स ते का फंसास हाथे दे जवाब देने इंगे दे जवाब में ती एक जवाब देन भी फंसे है कॉली मरियन ना
1: नवार्स ते का
0: फंसास आशा का फंसास हाथा का
1: फंसास आशे
0: यागीन को लबला रंगल जवाब है ती बुनी हमा
1: जे जैसे यागीन में
0: ही वनी

0: ei elave ki vara rit lave kavita ge lave
1: anga
0: mi ha tibunam mi oho anga mi ha ki kavita firhe mi ha bunam vi firhe mi ha tibuni nu udite udite nu abijitu
1: enta asa krasa nisu eka mara pavu mi
0: abijite ki nun ei ehen abijite faun asken uleni ah de abijite ngule kuri ge hama mashur mi lava ki untere abijita ki ves vara rit lava te ke kya funan vara gina film te ka lava kya funan abijitu ves ehem vi mahinga lava hasa kollan kon kuja ka lava hasa kollani
1: de ni gani gana wa antena do kollan de samaya
0: evi do okay hema lava jahala na vara bada shukriya inge
1: aa
2: aapka juta dekha bahut haseen hai ise apne pairon mein mat daliyega maila ho jayega प्यार में लोग एक दूसरे को बतौर निशानी फूल कार्ड अंगूठी रुमाल देते हैं ये पढ़ा और सुना था ये जूता लगता है प्यार में आपके यहाँ जूता देने का रिवाज है दिल चुराने का अच्छा अंदाज है

0: दुआ को सारे गीतों को जा सारो वादा नंत
1: नो
0: प्रॉमिस
1: प्रॉमिस
2: एमी हम था अबदो एकु गबो मा बाउ दवे.

0: Movie Mode. Movie Mode.
1: जब भी मेट के वाहा के दखा लायरों का मुलिया को नुफरी तो ये केस नो देने में नागु मेंट ने कहिए फुदेर का मरांगला जॉब तक दे मुंगने ने आईशी मेरे लावत हम मरी तो आईशी
2: तुम से ही
1: मेरे लावत इंगे मिंबर बाला
2: शायद क्यों फे चढ़ने लगी है ये रास्ते वाह
1: फिल्म दिलावा कुले फेनी कौन था कुतुस मिसो वहीं गे कमेंट कौन थी दिनी ट्रेन का